उकाबाड़ आने की बना हूँ। सीढ़ी सीढ़ी की वो नी रोई रोई की ईजा आड़िया बिकामी था ही इदा सीढ़ी सीढ़ी की इथोनी नी दियोगा की इदा सीढ़ी सीढ़ी की हा नाजा जा खानी नी दियोगा की जाबुनी हा नाजा जा उखानी।